0: நேர்களே, இன்னும் சில நொடிகளில் ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: Good morning, you are listening to the first update of the day from the Asian Games 2026 in Aichi, Nagoya. I am Prerna Sharma and alongside me is Mudita. India has already been in action across several disciplines this morning with some important results coming in. Let's take a look at the latest developments and bring you up to the speed with all the action so far. Mudita, over to you.
2: Shukriya Prerna. भारत ने आज शानदार शुरुआत की है. ट्रैप शूटिंग में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है. नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही. चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया. वहीं कुवैत ने 325 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता. एक अच्छी खबर नीरू ढांडा ने और दी है कि वो व्यक्तिगत फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है. 27 निशानेबाजों के व्यक्तिगत क्वालिफाइंग राउंड में नीरू पहले स्थान पर रही हैं. आशिमा ने 16वां जबकि मनीषा ने 23वां स्थान हासिल किया. वहीं पुरुषों में शपथ भारद्वाज भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं. 117 अंकों के साथ शपथ भारद्वाज 8वें स्थान पर रहे. वहीं पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में भारतीय टीम 339 अंकों के साथ छठे नंबर पर रही. अगली खबर हमारे पास तीरंदाजी से है प्रेरणा. तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया. वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की. अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज्बेकिस्तान के अमीर खोन सादिकोव से और नीरज चौहान का मुकाबला भूटान के लैम दोर्जी से होगा.
1: In track cycling, the Indian women's team sprint trio of Celestina, Sarita Kumari, Keerta Rangaswamy, Chikka finished 6th in qualification, clocking 50.414 seconds. They were 3.742 seconds behind leaders China. The qualification round determines the seeding for the next stage. With 6th place set to the face 4th place, India will therefore take on Chinese Taipei in Heat 1 at the 11:30 this morning. The Indian men also competed in the team sprint qualification. Rohit Singh, David Beckham and Ronaldo Singh recorded the seventh fastest time among the 8 teams in the field. They will now look to improve their performance as the competition moves into its next stage. In Kurush, Vipin's Kumar campaign in the men's 66kg category came to an end in the round of 16. He lost 0-3 to South Korea's Yoon Hyun-soo. The available scoring indicates that Vipin conceded 2 points on a chala, a basic throwing technique in Kurush, while the match feed also credits him with a throw. This results bring his individual campaign at the games to a close.
2: और वही भारतीय महिला स्क्वाश टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है. टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही भारतीय टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची है. तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता. वहीं

0: नाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में शिकस्त दी। जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच जीतकर ईरान के खिलाफ 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। इसमें बता दें कि तन्वी खन्ना की जो ओपोनेंट थी ईरान की नरगिस सुल्तानी, वो खेल के बीच में ही रिटायर हो गई थी। और पूल सी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
1: Now gliding through the slalom gates, the Canon and slalom with the speed and focus, H. Kewat logged in an 8th place finish at 118.22 seconds, closely followed by P.S. Rathod claiming 10th with a time of 127.70 seconds. P. Jagta battled through the course to secure 7th place in 224.20 seconds, while R. Sen wrapped up the run in 9th place at 342.72 seconds, pushing through to the finish line. S. Chahan rounded out the Indian lineup in 11th place with a time of 344.87 seconds.
0: और एक खबर क्रिकेट की हम जरूर देना चाहेंगे कि सेमीफाइनल में अब भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। नेपाल और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच भी बारिश की वजह से रद्द हो गया है, बल्कि चारों क्वार्टर फाइनल मैचेस बारिश की वजह से रद्द हो गए हैं। ऐसे में बेहतर रैंकिंग के आधार पर श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। और कल भारत और अफगानिस्तान का मैच भी बारिश के कारण नहीं हो सका था। रिजर्व डे नहीं होने के कारण भारत ने भी बेहतर रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया था।
1: And looking at the medal tally, India holds the 12th position on the medal tally with a total of 46 medals, in which Mudita 4 are gold, 21 silver and 21 are bronze.
0: तो इसके साथ ही मुदिता और प्रेरणा को दीजिए इजाजत। ठीक एक घंटे बाद हम फिर हाजिर होंगे नई और ताजा अपडेट्स के साथ। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशिया
4: FM रेनबो 102.8 இசையோடு என்றும் நீங்கள்
5: நேயர்கள், இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வந்த 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.
6: உங்கள் வீட்டிலும் சோலார் மின் உற்பத்தி நிலையம் அமைக்க சிறந்த வாய்ப்பு.
7: பிரதம மந்திரி சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டத்தின் கீழ் 3 கிலோவாட் சோலார் அமைப்பிற்கு மத்திய அரசு ₹78,000 மற்றும் புதுச்சேரி அரசு ₹30,000 மானியம் வழங்குகிறது. மாதம் 450 யூனிட் வரை மின்சாரம் பெறலாம்.
6: மேலும் விவரங்களுக்கு 9489080373.
5: நேரம் 9:36. நீங்க கேட்டு இருக்கிறது நேயர் விருப்பம் நிகழ்ச்சி FM ரெயின்போ 102.8. அடுத்ததாய் பாடல் யாருக்கு வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? கஜினி திரைப்படத்திலிருந்து ஒரு மாலை பொழுது பாடல் கேட்டிருக்காங்க ராமகிருஷ்ணன் கொழும கொண்டான்லேருந்து. ஸோ அவருக்கான அந்த பாடல் வருது. அது கூட உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டை நீங்களும் கேட்கறதுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 7598510505. உங்க ஊரு, பேரு, படம், என்ன பாட்டுன்னு நீங்க எங்களுக்கு அனுப்பணும். ஸோ எல்லாரும் கேட்கலாம். பாடல் வருது, கேட்க நீங்க கேட்டு FM ரெயின்போ 102.8.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: Good morning once again and welcome back to the second update of the day from the Asian Games 2026 in Aichi, Nagoya. I am Prerna Sharma and I have Mudita with me. The morning has already brought some interesting developments for India with a silver medal, and we'll begin this update with the latest again from the cycling track. Women pursued cycling. The Indian women's team pursued quartet of Harshita Jhakar, Pooja Dandole, Meenakshi and Swasti Singh, finished fifth in the qualification round. The result has taken them through to the head-to-head heats, where they will now look to build on their qualification performance and continue their campaign. So, Mudita, what is there from the shooting range for our listeners?
2: Prerna, जैसा कि आपने बताया कि आज सुबह ही ट्रैप शूटिंग में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है. वहीं ट्रैप शूटिंग में ही नीरू ढांडा ने व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और अब मेडल के लिए उनका मुकाबला जारी है. काफी उम्मीदें हैं नीरू से, क्योंकि इसके पहले के राउंड में वो शीर्ष पर रही थी.
1: And now coming to sports climbing, India's Jogga Purti has officially qualified for the knockout finals in the women's speed climbing event. She clocked a time of 7.28 seconds to secure the 9th position overall, with the official cue next to her name confirming her spot in the next round. At the top of the leaderboard was China's L Deng, leads the standings with the game's record time of 6.23 seconds, followed closely by South Korea's Jae Jeong at 6.25 seconds.
2: तीरंदाजी में जहां सुबह धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने हमें अच्छी खबरें दी थी, तो वहीं अब रिकर्व विमेंस इंडिविजुअल में राउंड ऑफ 16 में कुमकुम अनिल महूद और कीर्ति शर्मा क्वालिफाई करके अगले राउंड में पहुंच गई हैं, यानी राउंड ऑफ 8 में प्रवेश कर गई हैं. कुमकुम ने मंगोलिया की बिशिंदी उरान तुलंगलाक को, वहीं कीर्ति ने वियतनाम की हुआंग फुआंग थाओ को हराया. राउंड ऑफ 8 के मुकाबले जारी हैं.
1: And Mudita, if looking back at the earlier action from the Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official games debut and a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals heat 4, India's Kishore Kumar Annabarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
2: और अब बात टेनिस की, जहां मेन्स सिंगल्स में दक्षिणेश्वर सुरेश और इंडोनेशिया के गुनावन त्रिसमुवंत्रा के बीच मुकाबला जारी है. फिलहाल डी सुरेश लीड कर रहे हैं 7-5 और दूसरा सेट बराबरी पे चल रहा है. उम्मीद है कि वो भी यहां से अगले राउंड में प्रवेश करेंगे. वहीं टेनिस में ही कल जो सुमित नागल का मैच बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया था, उस मैच में पहले सेट में नागल 3-2 से आगे चल रहे थे, लेकिन बारिश के कारण उस मैच को रोकना पड़ा था, तो ये मैच आज फिर से होगा. टेनिस में ही पुरुष डबल्स के मुकाबले भी आज शेड्यूल्ड हैं. युकी भामरी और दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी कजाकिस्तान के बेबिट जुकायेव और डेनिस येवसेयेव की जोड़ी का सामना करेगी. अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी का मुकाबला नेपाल के प्रदीप खड़का और अभिषेक बस्तोला की जोड़ी से होगा. वहीं मिश्रित युगल में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के क्यारन थॉम्सन और यूडिस चोंग की जोड़ी से होगा.
1: And there is plenty of Indian action to look forward to as the athletics program reaches its final day with 9 finals featuring Indian athletes or teams. Dev Kumar Meen and Kuldeep Kumar will compete in the men's pole vault final, while Pooja and Supriya Basavaraju will contest in the women's high jump final. In the men's 5000 meters final, double medalist Gulveer Singh and Avinash Sable will be in action, while Anushka Yadav and Tanya Chaudhary will compete in the women's hammer throw final. Medals will also be decided in the men's and women's 800 meters, as well as the men's

0: एशियन गेम्स आईची नागोया में भारत के हिस्से आई है शानदार सफलता, स्वर्णिम सफलता। नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं प्रेरणा शर्मा। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही, जो उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से 2 शॉट आगे था। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया है। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है और उन्होंने ये गोल्ड मेडल के साथ किया है। 26 साल की नीरू ढांडा भारत की लीडिंग ट्रैप शूटर हैं। 2022 में ओसिजेक में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और तब से ISSF सर्किट पर एक रेगुलर फाइनलिस्ट के तौर पर वो दिखती हैं। 2025 में उन्होंने विमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता और शॉटगन शूटिंग में भारत की टॉप परफॉर्मर्स में से एक बन गई। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में विमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF वर्ल्ड कप में ट्रैप मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। तो इसके साथ ही एक नया रिकॉर्ड, एक नई सफलता, लगातार सफलता प्रेरणा नीरू ने हासिल करी और भारत के लिए भी अब स्वर्ण पदक की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई है। शूटिंग में ये दूसरा गोल्ड मेडल है।
1: And there is also a big result coming in, Mudita, from boxing. India's Parveen Hooda has stormed it into the women's 65-kilogram final after commanding a 5-0 victory over China's Li Shu in the semi-final. With this win, Parveen becomes the first Indian boxer at the ongoing Asian Games to book a place in a gold medal bout. She will now compete for the top prize in the final. This is also a significant return to the Asian Games stage for Parveen, who had won a bronze medal at the Hangzhou Games.
0: बिल्कुल प्रेरणा। और अब हम चलते हैं आर्चरी की तरफ। रिकर्व विमेंस इंडिविजुअल में कुमकुम अनिल मोहोद ने बांग्लादेश की साइमा सलाहुद्दीन को 6-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जहां उनका मुकाबला अब होगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग चाई यंग से। कांग चाई यंग ने भारत की ही दूसरी निशानेबाज कीर्ति शर्मा को 7-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ये दिलचस्प मुकाबला अब देखने वाला और बन गया है प्रेरणा। वहीं धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने भी आज सुबह अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहले ही जगह पक्की कर ली है।
1: The day has been unexpected for us, and we have another result coming in from tennis. India's Dakshineshwar Suresh has booked his place in the next round of the men's single after a straight set victory over Indonesia's Guawan in the second round. Suresh won the match 7-5, 7-6, with the second set going to a tiebreak, which he won 7-2. It was a strong serving performance from the Indian, who won 80% of his points behind both his first and second serves in the opening set, improving his second serve percentage to 85% in the second. There was just one break of serve in the entire match, which came in the opening set before Suresh held his nerve in the second set tiebreak to steal the win. And India's Sumit Nagpal is also currently dominating his men's single round match against South Korea's Seong Chun Hong. After taking the first set 6-4, Nagal has rode ahead in the second set with a 2-0 lead as the match continues live at the Nagoya City Higashimiya Park Tennis Center.
0: जी, और इसके साथ ही अब आने वाले मुकाबलों के बारे में प्रेरणा हमें बताइए आप।
1: एंड उससे पहले इंडिया हैज नाउ ऑफिशियली क्लाइम टू द 11th प्लेस ऑन द ओवरऑल स्टैंडिंग्स विद another gold medal added to the collection, and India's count now stands at 5 gold and 21 silver and 21 bronze, bringing the total tally to 47 medals. Team India is now sitting right on the edge of the top 10, and we are just behind 10th placed Malaysia.
0: तो इस बड़ी खबर, इस स्वर्णिम खबर के साथ ही

0: हम अब इस अपडेट को समाप्त करते हैं। अगले अपडेट में हम शायद और पदकों की खबर के साथ वापस आएंगे प्रेरणा, और अपने श्रोताओं से फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: நேயர்கள், இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: medalist. The result keeps Neeraj's campaign moving forward and strengthen India's hopes in the event. There is also plenty to cheer about in boxing, where Parveen Huda and Ankush Panghal have both won their respective semi-final bouts to book places in the finals. Parveen produced a commanding 5-0 victory over Shan Liu Xing in the women's 65 kg semi-final to become first Indian boxer at these games to enter the gold medal bout. Ankush had also secured his place in the final, assuring India of at least 2 silver medals in boxing. And building on that massive vows to a medal count, where shooter Neeru Dhanda scripted history by winning India's 5th gold medal in the women's trap event with a record-setting score of 28, the action at the shooting range is far from over. All eyes are now locked up on the trap men individual final, where Shapat Bharadwaj is battling it out in the medal round. He's currently sitting in the 7th place with a score of 7 as he looks to stage a comeback and fight his way ahead at the leaderboard. And now Mudita will take you through some of the key developments from across the games.
1: जी प्रेरणा, मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने एक बड़ा उलटफेर किया है. उन्होंने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एर्किनबोग को स्प्लिट डिसीजन में 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल बाउट में जगह बना ली है. और ये सफलता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि फजलुद्दीन एर्किनबोग ने 2025 में इसी भार वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी. बड़ी सफलता है ये अंकुश की. और इस जीत के साथ ही अंकुश 8 साल के बाद एशियाई खेलों उज़्बेक की प्रतिद्वंदी पर जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज भी बने हैं. इसके पहले 2018 में एशियन गेम्स के पुरुष फ्लाईवेट 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट अमित पंघाल ने 2016 के ओलंपिक चैंपियन हसन बॉयद उस्मतोव को एक टाइट फाइनल में 3-2 से हराया था. तो इसके साथ ही पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भी भारत का कम से कम रजत पदक पक्का हो गया है. वहीं नरेंद्र बेलवाल ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है. सेमीफाइनल में वो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन कजाकिस्तान के एबेक ओरलबे से 0-5 के एक मत फैसले से हार गए. होंगजो चीन 2022 में कांस्य पदक के बाद ये नरेंद्र का लगातार दूसरा एशियन गेम्स मेडल होगा. और इसके पहले परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था और पक्का कर दिया था कि कम से कम वहां भी रजत पदक भारत की झोली में आएगा. इसके अलावा 3 और मुक्केबाज भी हैं जो पदक तो पक्के कर चुके हैं, लवलीना बोरगोहेन, प्रिया घनगस और कपिल पोखरिया. अब देखना है कि पदक का रंग कौन सा रहता है.
0: एंड टीम इंडिया इज ऑल सेट टू continue in action in the volleyball court today. And in the men's pre-eliminatory round, Pool C, India is head-to-head now against Qatar at the Park Arena Komaki. So Qatar is at 3 and India is also at 3. So we could see, Mudita, ki some live action could come up and some interesting results will be awaited. Some medal will be awaited in volleyball.
1: जी बिल्कुल. और इसके साथ ही टेनिस में पुरुष एकल के दूसरे राउंड में सुमित नागल ने दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को सीधे सेटों में 6-4, 6-0 से हराकर अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है. सुमित नागल का ये पुरुष एकल का द्वितीय दौर का मैच जो कल बारिश के कारण स्थगित कर दिया गया था वो आज कंटिन्यू किया गया था. इसके पहले ही आज ही दक्षिणेश्वर सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावंत्र सुमोवंत्रा को 7-5, 7-6 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया. पुरुष डबल्स के मुकाबले भी आज शेड्यूल्ड हैं. यूकी भांबरी दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी खेलेगी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी भी मुकाबले में होगी. वहीं मिश्रित युगल में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना नजर आएंगे.
0: And looking ahead, it's the final day of the athletics program and there are 9 finals lined up with an Indian athletes or team featuring in every one of them. In men's pole vault final, Dev Kumar Meena and Kuldeep Kumar will be in action, followed by Pooja and Supriya Basaravaraju in the women's high jump final. The men's 5000 meter final, we will see double medalist Gulveer Singh and Avinash Sable take to the track. In the women's hammer throw, Anushka Yadav and Tanya Chaudhary will also be competing for a podium finish. There will also be medals at stake in men's and women's 800 meters along with the men's and women's 4x400 meter relays. So Team India is all set in action and that is it from the updates for now. We will take your leave for now and we'll be back with another Ali update.

0: जी बिल्कुल प्रेरणा, शूटिंग में आज शानदार दिन रहा है भारत का। एक के बाद एक दो सफलताएं मिली हैं। आज सुबह पहले ट्रैप शूटिंग में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। हमारे जो श्रोता अभी तक की अपडेट्स नहीं सुन पाए थे, हम उनके लिए फिर से बताना चाहेंगे कि भारतीय महिला टीम ने ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। उसके बाद आई वो सफलता जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। नीरू ढांडा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस रही नीरू की। और ये एक खास बात है प्रेरणा कि ये पहला इंडिविजुअल गोल्ड है भारत के लिए इस एशियन गेम्स में। 26 साल की भारतीय शूटर नीरू ढांडा, उन्होंने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। और इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई और उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। वहीं पुरुषों की ट्रैप शूटिंग में शपथ भारद्वाज फाइनल में पहुंचे लेकिन पदक के करीब नहीं पहुंच सके। कुवैत के खालिद अल मुदहफ ने स्वर्ण पदक हासिल किया। चाइनीज ताइपेई के कुनपी यांग ने रजत और चीन के की यिंग ने कांस्य पदक हासिल किया। तो इस तरह प्रेरणा शूटिंग में अब तक 15 पदक हासिल कर लिए हैं भारत ने, जिसमें 2 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: And some medals have come up officially, and now there are some unofficial medals that have also been confirmed in boxing. And stepping inside the ring, we have massive explosive updates from the Indian boxing contingent, where 3 major medal outcomes have just been locked in. Women's 65 kg semi-final, India's Parveen Hooda has stormed her way into the women's 65 kg final. With this dominant victory, she has guaranteed herself at least a silver medal, putting India within touching distance of yet another gold. Talking about the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal delivered a masterclass in the men's 80 kg semi-final to secure his spot in the gold medal match. He joins the final bound boxers, assuring Team India of at least a silver medal. Talking about men's 90 plus kg semi-final, heavyweight star Narendra Berewal stood toe-to-toe in a fierce battle against world champion Ebek Urbale. Despite a courageous fight, Berewal has edged out in this semi-final encounter. Berewal officially signs off with a hard-earned bronze medal for the country. 2 final spots booked and a bronze secured. The Indian boxers are putting on an absolute show in the ring, Mudita.
0: और तीरंदाजी में भी प्रेरणा अच्छा दिन रहा भारत के लिए। धीरज ब्रह्मदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों के रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज्बेकिस्तान के अमीर खोन सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में कुमकुम अनिल मोहित क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग चाई यांग से होगा। यांग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
1: Now taking our listeners to the cycling track, where India have made a trip to the bronze medal race in the women's team pursuit. The Indian quadrant put together a strong performance in the heats, clocking 4 minutes 46.950 seconds. That effort has secured them a place in the bronze medal race, giving India another opportunity to fight for a podium finish in the track cycling. The team pursuit had decided over a longer distance with the riders together as a unit and maintaining their information. And let me just take you to the medal tally, checking in all of the overall standings. Team India remains firmly positioned at 11th place on the medal leaderboard.
0: इसके साथ ही स्क्वैश का भी हम चलते चलते बता देते हैं कि भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने भी अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही मुदिता और प्रेरणा को दीजिए इजाजत, हम कुछ देर में फिर से हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: இதுவரை ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள்.

0: एशियन गेम्स 2026 में भारत को ट्रैप शूटिंग में आज एक के बाद एक दो सफलताएं हासिल हुई, एक इंडिविजुअल गोल्ड और एक टीम इवेंट में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक हासिल किया भारत ने। और अब नए अपडेट्स के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं प्रेरणा शर्मा।
1: एंड अब एक नजर वॉलीबॉल पे, तो एन इंटेंस इनकाउंटर इज करंटली अंडर वे एट पार्क एरिना कोमाकियास। टीम इंडिया स्टेजेस अ रिमार्केबल कमबैक अगेंस्ट कतर, फोर्सिंग अ डिसाइडिंग फिफ्थ सेट इन द मेंस वॉलीबॉल प्री एलिमिनरी राउंड पूल सी। कतर गेन द अर्ली एडवांटेज बाय विनिंग अ टाइटली कंटेस्टेड ओपनिंग सेट 28-26 इन 34 मिनट्स। इंडिया क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज इन द सेकेंड सेट, एस्टैब्लिशिंग अ 4-point लीड, बट कतर क्लोज्ड आउट क्रूशियल पॉइंट्स टू टेक इट 27-25 and extend their lead to 2-0. Facing a must-win situation, India responded with determination. The team secured the third set 25-23 to extend the match before carrying that momentum into the fourth set to deliver a convincing 25-20 victory and level the overall score at 2-2. After more than 2 hours of competitive play, the match enters its final place and both India and Qatar are at par now at 20-20.
0: और टेनिस में भी सफलता का दौर जारी है। अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी अगले दौर में पहुंच गई है। दूसरे दौर के मुकाबले में उन्होंने नेपाल के प्रदीप खड़का और अभिषेक बस्तोला की जोड़ी को 6-2, 6-1 से सीधे सेटों में हराया। वहीं यूकी भामरी और दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी का मुकाबला कजाकिस्तान के बेबेट जुकायेव और डेनिस येवसेयेव की जोड़ी के साथ जारी है। पहला सेट यूकी भामरी और दक्षिणेश्वर सुरेश की जोड़ी जीत चुकी है और ये खबर बताते बताते ही फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है इस मैच का। 6-1 और 7-5 से यूकी भामरी और डी सुरेश की जोड़ी ने ये मैच भी जीत लिया है और वो भी अगले दौर में प्रवेश कर गए हैं। अब मिश्रित युगल के पहले दौर में एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के कैरन थॉम्सन और यूडिस चोंग की जोड़ी से होगा। इसके पहले पुरुष एकल में सुमित नागल और दक्षिणेश्वर सुरेश अगले दौर में प्रवेश कर चुके हैं।
1: And now let's take you through the archery action once again, with more Indian archers now making their way to the quarterfinals. Dheeraj Bumdevra and Neeraj Chauhan have both advanced to the quarterfinals of the men's recurve individual event. Dheeraj, the World Cup final champion, will face Uzbekistan's Imrik Sadviok, while Neeraj Chauhan

0: நேர்களை, ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தற்போதைய நிலவரத்தை டெல்லியிலிருந்து அனுசை கேட்கலாம்.
1: एथलेटिक्स में आज पदकों की झड़ी लग गई है. एक और स्वर्ण पदक हासिल किया है भारत ने एथलेटिक्स में. इसके अलावा आज पूरे दिन भर में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, यानी कुल मिलाकर 8 पदक जीते हैं भारत ने. एक एक करके हम उन सभी पदकों के बारे में बात करेंगे, खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे. नमस्कार, मैं हूं मुदिता और स्वागत है आपका एशियन गेम्स के ताजा अपडेट्स में. तो सबसे पहले प्रेरणा, मैं हूं मुदिता और साथ में है मेरे प्रेरणा. तो प्रेरणा, सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड मेडल की, जो आया है महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस में. किरण एम पुवम्मा, प्राची और विथ्या रामराज की चौकड़ी ने 3:29.69 का समय लेकर टॉप किया और आज के दिन को अपने स्वर्णिम दिन में बदला है. और इस जीत के साथ भारत ने इस इवेंट के इतिहास में अपना 7वां एशियाड गोल्ड जीता और 1982 से हर एडिशन में मेडल जीतने का अपना 44 साल का सिलसिला बनाए रखा है. इसके अलावा जो पदक आया है वो है पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में, जहां कांस्य पदक जीता है धर्मवीर चौधरी, मनु थेक्किनिल, विशाल टीके और जय कुमार की चौकड़ी ने. इनका समय रहा 3:01.61. इसके पहले 4x100 मीटर के मिक्स रिले में भी कांस्य पदक जीता भारतीय दल ने. गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा सत्यनारायण, अनिमेश कुजूर और हरिता भद्रा की भारतीय चौकड़ी 41.06 सेकेंड के समय के साथ, यानी 41:06 सेकेंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही और इसके साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है. इसके पहले हम बता चुके हैं हालांकि अपने श्रोताओं को, लेकिन एक बार फिर से जिनसे भी मिस हुआ हो हम बताना चाहेंगे कि एथलेटिक्स में 5000 मीटर के फाइनल में गुलबीर सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया और वहीं महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह ने भी कांस्य पदक जीता.
2: And Mudita, while today brought plenty of reasons to celebrate with brand new medals added to the tally, track and field gave us realistic look at just how the competition really is at the Asian Games. It was a session filled with strong efforts, personal achievements and even national records, even if the results did not end with a medal around the neck. Starting with the track events, Pooja lined up in the women's 800 meter final against some of the fastest runners on the continent. She stayed in the mix through the first lap and pushed hard all the way to the finish line, ultimately placing 7th overall with a time of 2:06.72. China's Wu Hongzhou took the gold medal in that race. Over in the men's 800 meter final, Mohammad Afzal was looking to repeat his success from the last Asian Games in Hangzhou, where he won a silver medal. He put up a brave fight against a very fast pack, but as they rounded the final bend, he couldn't keep pace with the leaders. Afzal crossed the line in the 8th place with a time of 1:48.27. Moving over to the field events, India had 2 athletes competing in the women's hammer throw final. Tanya Chaudhary came remarkably close to stepping onto the podium. She threw a distance of 65.35 meter, which was actually the best performance of her entire career. That personal best earned her 4th place, leaving her just 1 spot short of the medal. Her teammate Anushka Yadav also put together a solid series of throws, finishing right behind her in the 5th place with a mark of 64.56 meter. Finally, the men's pole vault final turned out to be a mix of heartbreak and history. Kuldeep Kumar cleared the bar at 5.35 meter, but 3 missed attempts of 5.50 meter saw him finish in the 10th place. Meanwhile, 22-year-old Dev

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: Hello and welcome back to the Ali Updates on Asian Games 2026. I am Prerna Sharma and I have with me Mudita here, and we have bring you back with the updates from the latest Asian Games. So starting with today's result on the archery range, Dhiraj and Neeraj Chauhan both delivered solid performances in the men's recurve individual event to advance to the quarterfinals, while Kumkum Anil Mohod also progressed to the quarterfinal stage in the women's recurve individual category. Over in today's boxing semi-finals, Parveen Hooda scored a convincing 5-0 victory in the women's 65kg division to reach the final, and Ankush Panghal fought through his men's 80kg bout to secure place in the gold medal match, while heavyweight Narendra Barwal fell in men's 90+kg semi-final to wrap up his campaign with a bronze medal. Over to you, Mudita.
2: जी प्रेरणा, और आज एथलेटिक्स में भारतीय अभियान समाप्त हो गया है। 1 गोल्ड 9 सिल्वर और 14 कांस्य पदकों के साथ भारत ने कुल 24 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए हैं। आज का दिन बेहद खास रहा क्योंकि आज एथलेटिक्स में भारत ने 5 पदक जीते जिसमें 1 स्वर्ण पदक भी शामिल है। सबसे पहली सफलता आज हासिल की कुलवीर सिंह ने, जिन्होंने पुरुषों की 5000 मीटर के फाइनल में कांस्य पदक हासिल किया और इसके साथ ही कुल 3 पदक हासिल किए उन्होंने इस एशियन गेम्स में। इसके बाद 4x100 मीटर मिक्स रिले में भारतीय एथलीट्स ने कांस्य पदक हासिल किया। गुरिंदर वीर सिंह, स्नेहा सत्यनारायण, अनिमेश कुजूर और हरिता भद्रा की भारतीय चौकड़ी 41:06 के समय के साथ तीसरे स्थान पर रही और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा। पूजा सिंह ने महिलाओं की ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता और इसके बाद महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में आया स्वर्ण पदक। किरण, एम पुवम्मा, प्राची और विथ्या रामराज की चौकड़ी ने 3:29.69 का समय लेकर टॉप किया और इस जीत के साथ ही भारत ने इवेंट के इतिहास में अपना 7वां एशियाई गोल्ड जीता और 1982 से हर एडिशन में मेडल जीतने का अपना 44 साल का सिलसिला बनाए रखा। और भारत ने अपना अभियान खत्म किया एक और मेडल के साथ, जो आया पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में। धर्मवीर चौधरी, मनु थिक्कनलिल, विशाल टीके, जय कुमार की चौकड़ी ने 3:01.61 का समय निकालकर कांस्य पदक हासिल किया।
1: And definitely it has been a very remarkable day for India with 2 goals coming in alongside other prominent medals. And Mudita, looking ahead to tomorrow's archery action, India's compound archers take center stage in the 3 major semi-finals, with the women's team facing the Republic of Korea, followed by the mixed team taking on Thailand, and concluding as the men's team goes hand-to-hand with Republic of Korea. Meanwhile, tomorrow's boxing schedule features 3 high-stakes semi-final bouts, where Lovlina Borgain takes on Kazakhstan's Natalia in women's 75kg and Kapil Pokharia meets Uzbekistan's Turab Bek in the men's 90kg semi-final.
2: कल की बात करने से पहले प्रेरणा, हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि टेनिस के मिश्रित युगल के पहले दौर में जो है मिक्स्ड डबल्स का मुकाबला जो चल रहा है, उसमें एन श्रीराम बालाजी और अंकिता रैना का सामना हांगकांग के कैरन थॉम्सन और यूडिस चोंग की जोड़ी से हो रहा है। पहला सेट भारतीय जोड़ी 6-4 से हार चुकी है। दूसरे सेट में उम्मीदें अभी हमारी बरकरार है, वो शुरू होगा और उसके बाद हम देखते हैं। हालांकि टेनिस में आज का भारत के लिए काफी अच्छा रहा क्योंकि इसके पहले के दोनों एकल और दोनों डबल्स मुकाबले भारत ने जीते।
1: कमिंग टू रेसलिंग, निशा फेसेस नॉर्थ कोरिया स्पार्क सॉय गम इन द वुमेन 68kg, व्हिच इज going to be held tomorrow, and later Sunil Kumar competes in the men's Greco-Roman 87 kilo wrestling.
2: और कल मुकाबला शूटिंग में भी देखने वाला होगा क्योंकि 25 मीटर रैपिड फायर में पुरुषों में अनीश भानवाला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं ट्रैप मिक्स टीम इवेंट में आज की स्वर्ण पदक विजेता नीरू ढांडा उतरेंगी काइनन चेन्नई के साथ। तो इसके साथ ही हमारा समय समाप्त होता है। कल सुबह ठीक 9:30 बजे हम फिर से हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले आज रात 10 बजे सुनना मत भूलिएगा डेली हाइलाइट्स, जिसमें हम आज के एशियन गेम्स के पूरे दिन का लेखा जोखा आपको देंगे, भारतीय खिलाड़ियों की हर सफलता असफलता की कहानी आपको बताएंगे। तो इसके साथ ही मुझे यानी मुदिता और मेरी साथी प्रेरणा शर्मा को दीजिए इजाजत। कल सुबह ठीक 9:30 बजे फिर से हम हाजिर होंगे। नमस्कार, नमस्कार।

0: வார்த்தைகள் தேய்ந்து போன இந்த வேளையில் மௌனமே மொழியாக மாறும் இந்த இரவில் அந்த மௌனத்தின் வழியை ஆற்ற வல்லதாய் அந்தி பொழுதின் குளிர்மையை கூட்டும் ஆரவரமில்லாத அழகான ஒரு பாடல். இதோ உங்களுக்காக எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் பாடியது. தொடர்ந்து கேளுங்க எஃப்எம் ரெயின்போ.
1: ஏஷியன் கேம்ஸ் 2026 ஐடி நகோயா.
2: हरियाणा के एक छोटे से शहर में जन्मी एक नन्ही लड़की को घर की बंदूक थामने का शौक लग गया। परिवार की दुनाली बंदूक से वो टीन के डब्बों पे निशाना लगाया करती, निशाने एकदम सटीक बैठते। उसके ममेरे भाई ने एशियन गेम्स 2018 में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक पाया तो उसने भी सोचा अब ये मौका है गेम को सीरियसली लेने का। ट्रेनिंग में लग गई और 5-6 साल में ही गोली की स्पीड से शिखर पे जा पहुंची और आज उसने स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों के किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन गेम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया

0: स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शाम से फाइनल्स में एंट्री की तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी 3 तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज। शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी। निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड। और यही नहीं, उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
1: शूटिंग में भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसके पहले 2025 में नीरू ने वुमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में वुमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
2: She joined the academy and then COVID hit. She went back home and she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days and something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressful condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we didn't manage all that support, got her back into the academy. Today she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.
0: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की बाट जोही जा रही थी और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही 1 पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई। पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़, जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया, और उसके बाद विशाल थिन्नारसु की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी। भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया और आज वो गुलवीर सिंह पिछले 1-2 सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की, जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे तो महिला हैमर थ्रो में

0: तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया, 65.35 मीटर दूर तार गोला फेंका, लेकिन चौथा स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा सातवें तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा, पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
1: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेज, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन्स 65 kg सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शु 5-0 टू स्टॉर्म इन टू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग इंडिया विद इन टचिंग डिस्टेंस ऑफ अनदर गोल्ड। ओवर इन द मेन्स 80 kg सेमीफाइनल, अंकुश पंघाल पुट ऑन अ मास्टर क्लास, पुलिंग ऑफ अ ब्रिलियंट कमबैक टू आउटपंच उज़्बेकिस्तान्स फासलुद्दीन। हिज विक्ट्री सिक्योर्ड हिज प्लेस इन द फाइनल एंड अशोर्ड टीम इंडिया ऑफ अनदर कंफर्म्ड सिल्वर मेडल एट मिनिमम। एंड इन द मेन्स प्लस 90 kg सेमीफाइनल, हेवीवेट स्टार नरेंद्र बरवाल स्टूड टो टू टो इन अ फियर्स बैटल अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन एबेक ओरलबे। डिस्पाइट अ करेजियस एफर्ट, बरवाल वॉज एज्ड आउट, साइनिंग ऑफ with a hard-earned bronze medal for the nation. His second consecutive Asian Games bronze. 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Parveen Hooda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80 kg semi-final, Ankush Panghal put on a masterclass, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazluddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90 kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Oralbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation. His second consecutive Asian Games bronze. 2 spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
0: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी 3 धनुर्धर चिड़िया की आंख, यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
2: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज़्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
0: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है, नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा, खुलासे के साथ मुदिता।
2: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गयी। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11-9 से जीतकर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पूल सी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
0: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे। और

0: आज भी विपक्षी कोरिया सही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
1: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1, 7-5 से मैच अपने नाम किया। जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2, 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स

0: फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज्बेकिस्तान के सरगेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1, 7-5 से मैच अपने नाम किया, जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2, 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के युडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
1: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों से ठार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
2: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर प्रोवाइडेड अ मच टफर चैलेंज। दे एज द ओपनिंग सेट 28-26 आफ्टर इंडिया मिस टू सेट पॉइंट्स एंड देन टुक द सेकंड 27-25 डिस्पाइट इंडिया बिल्डिंग अ 4-point लीड मिडवे थ्रू द सेट। टू सेट्स डाउन इंडिया शोड ट्रेमेंडस कंपोजर टू टर्न द मैच अराउंड। दे केप्ट देयर होप्स अलाइव बाय taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tie break to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With 3 wins from 3 matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
1: केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ, बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ, बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
0: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 127.70 सेकंड के साथ 10वां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में, तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था, जहां पल्लवी जगताप ने 7वां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने 9वां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
1: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगू कैसी रही, जानते हैं अभिनव से।
2: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
0: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोहित सिंह यांगलेन, डेविड बेकहम, एल्का टू चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन

0: शाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम्स से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं कि इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में यानी पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने सातवें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा बबन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया। किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।
1: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या, बता रही हैं मुदिता।
2: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी वल्हारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप, आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
0: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगापूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ 9वां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
3: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
1: कल कुश्ती आरंभ होगी जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
5: நேர்களே, ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20வது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த அவ்வப்போதைய நிலவரங்களை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். இனி தொடர்வது எஃப்எம் ரெயின்போ 98.8 நிகழ்ச்சிகள்.
6: எஃப்எம் ரெயின்போ 102.8 இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
5: நேரம் 10:20:37. நிஜ உலகத்திலிருந்து நழுவி சென்று கனவுகளின் தீவில் கால்பதிக்கும் வினாடி, மனதின் பாரத்தை கொஞ்சம் இறக்கி வைத்து மலர்களைப் போல் மெதுவாய் விரியும் இதயம், சற்றும் கூச்சமின்றி எரியும் காதல் கீதம் இது. இளையராஜா மற்றும் கே எஸ் சித்ரா இணைந்து பாடிய பாடல் கேட்கலாம். தொடர்ந்து கேளுங்க எஃப்எம் ரெயின்போ 98.8 என்றும் உங்கள் மனதோடு.